मुआज़ सामीन, बादशाह उन उलमा को 400 उलमा को मकान बना कर दिए, शादियां की, खर्चा दिया और वो बादशाह वहां से रवाना हो गया। उसके बाद अब ये उलमा वहां पर ठहरे और ये यसरब शरीफ की बस्ती जो है इसका क़याम हो गया और यहां पर लोग रहने लग गए। वक़्त और ज़माना गुज़रता गया और उन उलमा में से एक एक करके सारे फौत हो गए, यहाँ तक कि एक जो बाकी बचा उसकी मौत का जब वक़्त करीब आया तो उसने वहाँ रहने वाले लोगों को बुलाया और वो ख़त जो था उन अपनी औलादों को दिया, नस्लों को दिया और कहा ये ख़त है। और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के कमालात और आपकी खूबियां और आपकी अजमतें उन लोगों के सामने बयान फरमाई। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जब वो फौत हो गए उन लोगों ने वो ख़त ले लिया और हर वक़्त इस इंतज़ार में रहते किसी ना किसी दिन अल्लाह ताला का वो आखिरी नबी, आखिरी हबीब इस कायनात में आएगा और इस शहर में तशरीफ़ लाएगा। और जब उनमें से जब कोई बड़ा जो उनका बुज़ुर्ग होता, जब उसको मौत आती तो वो फिर अपने कबीले के लोगों को जमा करता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के कमालात बयान करते, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम नामी इरशाद फरमाते कि उनका नाम मुहम्मद है, मक्का शरीफ में पैदा होंगे, मदीना शरीफ इस ज़मीन यसरब में उनकी हिजरत गाह होगी, अल्लाह ताला के आप आखिरी हबीब होंगे, वो हबीब, वो अल्लाह के नबी कि जो सूरज को उंगली का इशारा करेंगे तो उसके वो वापस आ जाएगा, चांद को इशारा करेंगे तो दो टुकड़े हो जाएंगे, उंगलियों प्याले में रखेंगे तो पानी के चश्मे जारी हो जाएंगे, दरख्त पत्थर उनको दुरूद व सलाम के हदिये पेश करेंगे। ये सारे कमालात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बुज़ुर्ग अपनी औलाद को बताते जब उनकी मौत आती और कहते ये ख़त है, जब अल्लाह के हबीब आपके पास आ जाएं उनको ये ख़त देना, हमारे लिए भी दुआ कराना और हमारा सलाम अर्ज़ करना। मुअज़्ज़ज़ सामईन, एक एक करके वो बुज़ुर्ग गुज़रते गए यहाँ तक कि 1000 साल का अरसा गुज़र गया। 1000 साल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जब मक्का में पैदा हुए तो मदीना शरीफ के लोग यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है जब मेरे नबी पैदा हुए और ऐलान नबुव्वत फरमाया तो अहले मदीना और यहूद और नसारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को ऐसे जानते थे, ऐसे पहचानते थे जैसे वो अपने बच्चों को जानते और पहचानते हैं। क्यों? कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम कमालात, तमाम औसाफ, तमाम शानें अल्लाह ताला ने एक तो उनकी जो किताबें थी तौरात, इंजील, ज़बूर और सहीफ़े वग़ैरह, उनके अंदर अल्लाह ताला ने अपने हबीब की अजमतों और शानों को बयान किया हुआ था। और फिर जब भी उनकी कौम का कोई बड़ा फौत होता तो वो उन लोगों को जमा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के कमालात और शाने उनके सामने वो बयान किया करते थे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मदीना शरीफ में तशरीफ़ लाए तो वो जो ख़त था जो तुब्बा बादशाह ने दिया था और हज़ारों सालों से लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आमद का इंतज़ार कर रहे थे, वो हज़रत अय्यूब अंसारी के पास था। तो जिन लोगों ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हज़ारों साल इंतज़ार किया, दुरूद व सलाम पेश किए और आपकी नातें पढ़ते रहे, आपकी तारीफ़ करते रहे, तो वो कैसे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको अपनी रहमतों से, दुआओं से और अपनी बरकात से उनको माला माल कैसे नहीं फरमाते। बहरहाल वो जो बादशाह था
اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو خط لکھا تھا اس کے کچھ الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔

मुआज़्ज़िज़ सामईन, अब मुस्लिम कम्युनिटी रेडियो 92.1 FM सुन रहे हैं। उर्दू में ये प्रोग्राम आपका खादिम मोहम्मद इफ्तिखार हज़ारवी पेश कर रहा था। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। दुआ है अल्लाह ताला हम सब पर अपने हबीब के सदक़े रहमतों का नुज़ूल फरमाए और हरमैन शरीफ़ैन की बार बार अदब वाली हाज़िरी नसीब फरमाए।